0: में सारी निगाहें थी नीरज चोपड़ा, शॉटपट में तेजिंदर सिंह तूर और 5000 मीटर में पारुल चौधरी पर। सुबह के सत्र का केंद्र थे भारत के लाडले जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, 2018 गेम्स के स्वर्ण पदक धारी, पिछले गेम्स में चोट की वजह से नहीं आ पाए थे। ओलंपिक के विजेता, विश्व विजेता, एशियन गेम्स के विजेता, अलंकरण ही अलंकरण, लेकिन बीते समय चोट के शिकार रहे। करीब 9 महीने मैदान से दूर रहे वो। वापसी के बाद प्रदर्शन में अपनी पुरानी लय की खोज में दिखते रह रहे हैं। यहाँ इस स्पर्धा में मुकाबला खासा तगड़ा है उनके लिए। पाकिस्तान के अरशद नदीम, श्रीलंका के रुमेश थरांगा और हमवतन रोहित और यशवीर तो हैं ही। नीरज, रोहित यादव और यशवीर सिंह तीनों ने ही क्वालिफाई कर लिया फाइनल्स के लिए। हाँ, जो दूरी उनके भालों ने नापी वो कागज पर उतनी शानदार नहीं लग रही। नीरज ने दूसरे प्रयास में 79.61 मीटर भाला फेंका, जबकि 85 से ऊपर तो वो जब चाहे तब फेंक दिया करते थे। ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन मार्क था 84 मीटर, तो उनका ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन नहीं हुआ। लेकिन ठहरिए, 18 क्वालिफायर्स में से कोई भी ये मार्क हासिल नहीं कर पाया। नीरज ने बाद में कहा कि तेज हवा और ठंडक सभी भाला फेंकने वालों के लिए कठिन माहौल पैदा कर रही थी।
1: The throw was okay, like 79 meter throw, and the goal was to go in the final and give my best in the final. So I'm happy with the throw. Yeah, conditions are not best for javelin throwers. Not only cold, but it's really windy, and wind was also not in the front. It's sometimes it's from side, and it's really hard to process. Like where we have to throw. We are happy that we all three Indians are in the final.
0: तो अब निगाहें रहेंगी फाइनल में कि नीरज वहां पर उनका भाला लक्ष्य भेदने में सफल रहे। लेकिन कल का सबसे यादगार प्रदर्शन आया डिस्कस थ्रो में, महिलाओं की चक्का फेंक। सीमा कालीरम्मा ने अपना हालिया शानदार प्रदर्शन जारी रखा और कांस्य पदक हासिल किया। इस प्रतियोगिता में सीमा और निधि रानी के रूप में भारतीय चुनौती थी। शुरू से ही वो तीसरे और चौथे स्थान पर रही और सीमा ने अपने तीसरे प्रयास में 58.65 मीटर की दूरी नापी तो निधि का चक्का 57.10 मीटर तक गया और ये स्थिति उन दोनों ने अंत तक बनाए रखी। हालांकि इसके बाद के सारे थ्रो सीमा के फाउल हो गए, लेकिन तब भी ये जो प्रयास तीसरा था वो उन्हें कांस्य पदक दिला गया। निधि रानी चौथे स्थान पर आईं। सीमा एक जीवंत उदाहरण है स्त्री शक्ति की ताकत का। मातृत्व के कारण उन्होंने अवकाश लिया, कुछ दिन बिल्कुल अभ्यास से दूर रहीं, उसके बाद वापसी की, मैदान पर आई और अपनी पुरानी लय हासिल की, बल्कि उससे बेहतर। साथ ही पढ़ाई में भी अव्वल, डॉक्टरेट कर रही हैं। सलाम है सीमा आपको। नीरज के बाद जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा थी वो थे तेजिंदर सिंह तूर। शॉटपट में पदक की उम्मीद के साथ उतरे, दो बार के एशियाई गेम्स और एशियाई चैंपियन। उनके साथ थे समरदीप सिंह गिल। प्रतियोगिता की शुरुआत हुई, तूर ने कोशिश तो बहुत की लेकिन गोला 20 मीटर के आसपास ही जा पा रहा था उनका। तीसरे प्रयास में 20.27 मीटर फेंका उन्होंने, जो उनका कल का सबसे अच्छा थ्रो रहा, लेकिन ये काफी नहीं था पदक के लिए। वे पांचवें स्थान पर रहे, तो समरदीप सिंह गिल को ये संतोष अवश्य रहेगा कि उन्होंने भी 20 मीटर की दूरी पार कर ली। उनका बेस्ट थ्रो रहा 20.23 मीटर और वो सातवें स्थान पर आए। स्वर्ण नाइजीरिया के चुक वेयम्बुका ने जीता 21.07 मीटर के थ्रो के साथ। 200 मीटर में अनिमेश कुजूर सेमीफाइनल चक्र में ही बाहर हो गए, 20.65 सेकंड का समय और उनसे बहुत पीछे था। कुल मिलाकर वो 17वें स्थान पर रहे। सुबह के सत्र का शानदार प्रदर्शन रहा पुरुषों के ट्रिपल जंप स्पर्धा में। प्रवीण चित्रावल दूसरे स्थान पर रहे 16.41 मीटर की कूद के साथ, तो उनके साथ ही सेल्वा प्रभु तीसरे स्थान पर आए 16.26 मीटर के साथ और उन्होंने ट्रिपल जंप में पदक की आशाएं जागृत कर दी हैं। 400 मीटर में क्वालिफाई करने वाले विशाल टीके कल सेमीफाइनल में 46.33 सेकंड के समय के साथ छठे स्थान पर रहे और कुल मिलाकर 14वें स्थान पर सरक गए। पारुल चौधरी एक दिन पहले 3000 मीटर स्टीपल चेस की दौड़ को भुलाने के इरादे से मैदान में उतरी, लेकिन ये रेस उनका दर्द और बढ़ा गई। 15.856 सेकंड के साथ वो 13वें स्थान पर रही। हाँ, डेकथलान में तेजस्विन शंकर ने कल 5 स्पर्धाएं पूरी कर ली और पदक की होड़ में बने हुए हैं 4339 अंकों के साथ। अपनी प्रिय लॉन्ग जंप स्पर्धा में तो वो टॉप पर रहे और दिन समाप्त होने तक दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। अगर आज ये प्रदर्शन जारी रख पाते हैं तो निश्चित तौर पर पदक उनका इंतजार कर रहा है। और भारतीय दल से उम्मीदों के बारे में बता रहे हैं भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ रघुराम अय्यर।
2: आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टार्ट टू द कॉमनवेल्थ गेम्स। वी हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड 15 मेडल्स सो फार एंड द नेक्स्ट 3 और 4 डेज वी हैव सम वेरी इंटरेस्टिंग

0: bouts coming up. There are 8 or 10 of the boxers who made it to the semi-finals. There are weightlifters. And then, of course, there's the mega event of javelin and the track and field as well. So looking forward to a healthy tally of the Commonwealth Games for the closing ceremony.
1: On day 8, India's historic debut in para-track cycling at the Glasgow Commonwealth Games was highlighted by an inspiring performance from 16-year-old sensation Lisha Das. Hailing from Tezpur, Assam, the class 11 student took to the track at the Sir Chris Hoy Velodrome to become the first ever para-athlete from Assam to qualify for the Commonwealth Games. Competing in the high-octane women's C4-C5 4,000-meter individual pursuit qualification round, her debut marked a monumental step forward for Indian paracycling on the world stage, despite missing out on a spot in the final medal rounds.
2: इन खेलों में साइकिलिंग की स्पर्धा में सिर्फ ट्रैक साइकिलिंग ही है, रोड रेसेस और माउंटेन बाइक शामिल नहीं है. सर क्रिस हॉय वेलोड्रोम में ट्रैक साइकिलिंग का कल पहला दिन था और 6 स्वर्ण पदक दांव पर थे. भारत भी इनमें से एक पर अपना दांव लगा रहा था. पुरुष टीम स्प्रिंट, भारतीय टीम 6 और देशों के मुकाबले थी. 3 साइकिलिस्ट वेलोड्रोम ट्रैक का एक एक लैप पूरा करते हैं लगातार, एक एक करके. टीम ने कोशिश तो बहुत की लेकिन अंतिम पायदान पर ही आ सकी. एवरेज स्पीड रही 58.195 किलोमीटर प्रति घंटा. रोनाल्डो सिंह लाइथोन जंप, डेविड बेकहम और रोनजीत सिंह यांगलेम. अंतिम आना भी इस मायने में दिलासा देता है कि भारतीय साइकिलिंग अब विश्व स्तर पर प्रवेश कर चुकी है. आज खेलों का नवा दिन खासा सरगर्म रहने वाला है. बॉक्सिंग में 10 पदक पहले ही पक्के हो चुके हैं लेकिन पदक का रंग बेहतर करने के इरादे से सभी 10 बॉक्सर्स कल सेमीफाइनल में रिंग में उतरेंगे. महिलाओं में प्रीति, जैस्मिन, अरुंधति, प्रिया, साक्षी और लवलीना बोरगोहेन. और पुरुषों की बात करें तो उसमें सचिन होंगे, नरेंद्र होंगे, अंकुश होंगे और होंगे जादूमणि. देखना है इनमें से कितने बॉक्सर्स फाइनल में प्रवेश पाते हैं. मुक्केबाजी में भारत की उम्मीदों के बारे में बता रहे हैं भारतीय बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष अजय सिंह.
3: देखिए 14 इवेंट है टोटल हमारे बॉक्सिंग में और 7 लड़के और 7 लड़कियां, तो हमें लगता है कि जो आज तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस हमारा रहा है वो गोल्ड कोस्ट में ऑस्ट्रेलिया में, जब हमारे 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज आए थे. मुझे लगता है कि उससे बेहतर परफॉर्मेंस हमारा इस बार होगा.
1: इन जूडो देयर विल बी द मेंस 60 किलोग्राम राउंड ऑफ 16 इन विच हर्ष सिंह विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया. देयर विल बी वुमेन्स 52 किलोग्राम राउंड ऑफ 16 in which Shraddha Kadubal Chopade shall be representing India. There will be men's 66 kilogram round of 16 in which Rohit Basir Majgul shall be representing India. Then there will be women's 48 kilogram event quarterfinals in which Ashmita Day will be representing India. Then there will be women's 57 kilogram quarterfinal event in which Yamini Maurya shall be representing India.
2: Athletics mein decathlon ki spardhaen jari rahengi. Tejaswin Shankar padak ki hod mein baki bachi 5 स्पर्धाओं में उतरेंगे. मिक्स 4x400 रेले होगी जिसमें अंशु बाबू, नीरू पाठक, रशदीप कौर और विशाल टीके, 400 मीटर हर्डल्स में यशाश पलाक्ष और संतोष कुमार टी मैदान में उतरेंगे.
1: In track cycling, there will be men's 4,000-meter individual pursuit event in which Dinesh Kumar and Harshveer Singh Sekha shall be representing India. There will be men's Keirin first round events in which Ronaldo Singh, David Beckham and Jemsh Singh will be representing India. In lawn ball, the men's pair sectional play event shall be happening in which Navneet Singh and Dinesh Kumar will be representing India. There will be women's single sectional play in which Nayanmoni Sekhia shall be representing India.
4: बहुत प्रैक्टिस किया है, 6 घंटा कंपलसरी है, कभी ज्यादा भी होता है. अभी इस मुकाम में पहुंचा है कि ताकि हम लोग इंडिया के लिए कुछ कर सके.
1: It's time now to have a look at the latest updated medal tally at the end of day 8 of Glasgow Commonwealth Games 2026. On the first spot is Australia with 51 gold, 24 silver, 35 bronze, their total number of medals being 110. On the second spot is England with 15 gold, 30 silver and 20 bronze, their total number of medals being 65. And on the third spot is Canada with 15 gold, 13 silver and 17 bronze medal, their total being 45. India presently is on the 10th spot with a total of 17 medals.

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए

0: திஸ் இஸ் ஆகாஷ்வாணி, தி நியூஸ் ரெட் பை ரேணுகா. The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana PMSSY for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said that the scheme has been approved with a total outlay of 5,070 crore rupees.
1: सोलर कैपेसिटी पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड हाईएस्ट देश में लगी है. वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है. 102 गीगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में. टोटल 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी फोटोवोल्टेक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी. 5 साल की स्कीम है. 1 करोड़ पर मेगावाट का इसका सपोर्ट दिया जाएगा. 10 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशंस को ये प्रिवेंट करेगा.
0: In order to strengthen country's energy security and unlock vast offshore potential, the Union Cabinet has given its nod to the National Offshore Exploration Scheme, Samudra Manthan, with an approved outlay of 84,084 crore rupees for implementation up to financial year 2030-31. The Union Cabinet has given its approval to the continuation of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan.